0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka. Acha? वो क्या, अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

कभी कोई आदत बनाए आपकी, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहला ख्याल उसका आए और रात को सोने से पहले सबसे पहले याद जिसकी आए, उसी को याद करते हुए आंखें बंद हो जाएं और आप सो जाएं, और सुबह जब आप उठते हैं तो खुलते ही सबसे पहला जिक्र दिमाग उसी का दे आपको। जिंदगी में अगर कभी कुछ हो तो दिल करे कि सबसे पहले उसे बताऊं। जब भी दिल उदास हो तो दिल करे कि बस उससे बात हो जाए तो सारी उदासी खत्म हो जाएगी। ऐसा जो इंसान है वो आपकी मोहब्बत से ज्यादा आपकी आदत बन जाता है। एंड यू नो, जब कोई जिंदगी में इतना कीमती हो जाए कि वो आपकी आदत बन जाए तो उससे दूर रहना जरा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप उससे दूर जाएं या आप उससे कोई बात छुपाएं। और इसीलिए आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या जो आपकी आदत है, आप उससे झूठ नहीं बोल पाते। होता है कि नहीं ऐसा? सोचिए। और फिलहाल चलिए मैं आपके लिए एक और ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, इंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक। इस गाने की इस पार एक बार फिर से सताक्षी के साथ यहाँ पे रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। यू नो मेरा लैपटॉप, जी हाँ, आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जो आपके साथ शेयर करने का दिल है और बहुत कुछ सीखा मैंने जो शायद आपको भी समझ में आए। तो भाई ऐसा था कि मेरा लैपटॉप जो है वो बड़े सालों से मेरे साथ है और उसके साथ बड़ी अच्छी कट रही थी, मतलब सारी स्क्रिप्ट्स उस पर, सारी बातें उस पर, प्रोग्राम्स भी उसी पर बनते हैं, प्रोग्राम्स की हिस्ट्री यानी प्रीवियस प्रोग्राम्स भी सारे उसी पर। तो बड़े दिन से, बड़े महीनों से उसमें एक इशू आ रहा था कि चार्जिंग इशू आ रहा था और मैं सेट वेट करके काम चला रही थी, कभी लेफ्ट राइट करके उसका वायर सेट हो जाता था, कभी किसी चीज़ पर उसको टिका करके वायर सेट हो जाता था और चार्जिंग हो जा रही थी। तो सोचा कि दिखा लेंगे, बनवा लेंगे या दूसरा लैपटॉप ले लेंगे। कभी ये दिमाग में नहीं आया कि इसमें कुछ अर्जेंसी फंस सकती है। अब कल वो लैपटॉप पूरी तरह से बंद हो गया। अब स्क्रिप्ट्स आज के शो की उसमें थी, प्रोग्राम्स तो थे ही, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। इतनी बुद्धि नहीं चली इतने दिन से कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो उसका डेटा तो कम से कम रिकवर कर लें, कहीं पर तो रहे। तो ये सारी बातें इस मॉर्निंग आपसे क्या करने का मतलब है। यू नो हमारी जिंदगी में भी कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे ही तो होते हैं दोस्तों, जिनके लिए हम बहुत लेस एफर्ट्स करते हैं, रीजनेबल एफर्ट्स तो छोड़ दीजिए, हम जो जनरल एफर्ट्स हैं जिनकी उनको जरूरत है हम उतना भी नहीं देते उन्हें। हमें लगता है कहाँ ही जाएंगे, हमेशा हमारे साथ ही तो है, हमारे साथ ही तो रहेंगे, हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे। और बस हम उस रिश्ते को चलने देते हैं, उन चीज़ों को चलने देते हैं और नतीजा फिर कुछ ऐसा ही होता है, भयंकर नुकसान। तो भाई थोड़ा ध्यान से रिश्ते भी और चीज़ें भी दोनों इस्तेमाल कीजिए। आइए फिलहाल एक ट्रैक सुनिए मेरे साथ इसी बात पर और सुनते रहिए इट हैपन्स रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक टू हैपन सुमरे, आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। क्या ये हाल कर रखा है अपनी जिंदगी का, इतनी नीरस, इतनी बोरिंग बना रखी है। भाई देखिए, लाइफ में पागलपंती बहुत जरूरी होती है। जी हाँ, मैं जानती हूँ जिंदगी की जिम्मेदारियां बहुत हैं और वो जिम्मेदारियां आपको मैच्योर करती जा रही हैं, बड़ा करती जा रही हैं। बट यू नो दोस्तों, लाइफ का जो सबसे बुरा फेज होता है ना, वहां पर भी एक दूसरे के साथ शरारत करते रहने से आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। पागलपन जो है जिंदगी का, वो जिंदगी के हर फेज में, जिंदगी की हर उम्र में जरूर रहना चाहिए। बच्चों को देखा है कभी, आप उन्हें डांट देते हैं, वो थोड़ी देर के बाद आपके पास आकर फिर आपसे बात करते हैं, फिर से शैतानी करते हैं और फिर से अपने खेलों में बिजी होकर सब भूल जाते हैं। लेकिन हम बड़े पता नहीं क्यों मैच्योर होकर अपनी जिंदगी को ही भूलते चले जा रहे हैं। भाई बेवकूफी करते रहिए, पागलपन करते रहिए, शरारत करते रहिए, खुद के साथ नहीं तो सामने वाले के साथ करते रहिए, है ना। तो लाइफ में पागलपन, लाइफ में शरारत बहुत जरूरी है। ये आपको आपसे जोड़ कर रखती है, आपको जिंदगी में ये फील करवाती है कि बॉस जिंदगी अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है, है ना। जीते रहिए जिंदगी और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए पागलपंती से भरा हुआ मेरे साथ। एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो बुला मस्ती।

रेडियो बुला मस्ती पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं। देखिए, जिंदगी में दो तरह के लोग मैंने देखे हैं, या तो नदियों के जैसे और या समुंदर के जैसे। नदियों के जैसे लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं जो लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी फेस चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ बहते चले जाते हैं। उस फेस को ही वो अपनी जिंदगी या उस पल के लिए अपनी जिंदगी मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं समंदर जैसे लोग, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके अंदर कई नदियां आकर मिलती हैं, जो बहुत सारे इमोशन से भरे होते हैं, जो इतना तूफान अपने अंदर भर के रखते हैं कि वो लाइफ में परेशान है किसी बात को लेके, या लाइफ में उन्हें कोई टेंशन है, इस बात का मजाल है पता सामने वाले को चल जाए। वो हर एक फेस को खुद जीते हैं, हर एक परेशानी को खुद फेस करते हैं, सामने वाले से नहीं कहते, उन्हें लगता है हम संभाल लेंगे। लेकिन भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप नदी जैसे हैं तो भी ठीक है और समंदर जैसे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप कितने भी समंदर जैसे हों, समंदर को भी कभी कभी टूटना जरूरी होता है, वरना फिर वो वॉल्केनो की तरह फटता है और फिर प्रॉब्लम होती है ना, सुनामी फिर आती है। तो इसलिए अपने दिल को थोड़ा हल्का करते रहिए, अपनी जिसको भी आपको लगता है कि आपसे मोहब्बत है या जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, आपका फ्रेंड, आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी, आप अपने दिल की बात उससे जरूर शेयर कीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी पर।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन और दूसरे होते हैं लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। मंथली सब्सक्रिप्शन वाले जो लोग होते हैं जिंदगी में, जब उनकी जरूरत है, जब आपको उनकी नीड है या लाइफ का जो फेज है उसमें उनको आपके साथ होना चाहिए, आपने रिचार्ज किया और वो आपके साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाले लोग होते हैं, जिनके साथ आपका लाइफ टाइम का रिश्ता होता है, रिचार्ज पूरा है, वो लोग जो है वो लाइफ में आपके किसी भी फेज में, आप हो अच्छा फेज बुरा फेज, वो आपको हमेशा साथ निभाते हैं आपका, आपको हमेशा अपने सामने नजर आते हैं और आप एक बार ना उनसे रिश्ता खत्म भी कर दें, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत होगी वो बस वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, कहाँ से कैसे बिना किसी इनविटेशन के आपको नहीं पता। और ये जो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है आपके पास लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती। और देखिए, आप भी उनके साथ वही रिश्ता निभाइए जो वो आपके साथ निभा रहे हैं, है ना। तो ये दूसरी वाली जो कैटेगरी है मुझे लगता है बड़ी खास है, और इसी खास वाली कैटेगरी के नाम ये अगला ट्रैक भी है। इसे एंजॉय कीजिए, एंड के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ हैं आप।

जी हाँ, सताक्षी के साथ आप अभी तक सुन रहे थे दोस्तों इट हैपेंस। लेकिन अभी हम लाइफ के उस फेज में हैं जहां आज के इट हैपेंस से अब वक्त है इजाजत लेने का, विदा लेने का। तो चलिए, आज के सफर से अब मुझे जाना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर से कुछ जज्बात आपके साथ बिखरेंगे, कुछ बातें होंगी और हम और आप मिलकर कल फिर से जिंदगी को जियेंगे और कल की मॉर्निंग को एंजॉय करेंगे। तो आज के सफर से अब चलूं, हाँ, क्योंकि भाई अब आपको भी दिन शुरू करना है। याद रखिए, गाड़ी की चाबी भूलकर नीचे मत उतर जाइएगा, सेलफोन उठा लीजिएगा निकलते हुए। अगर आप घर से अकेले निकल रहे हैं, मतलब घर में और कोई नहीं है, तो लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा, सारे डोर्स लॉक करके और तभी निकलिएगा। वरना आधे रास्ते जाकर याद आता है ना अक्सर कि वापस लौटा जाए और सब बंद किया जाए, तो वो नहीं करना है। तो ध्यान से जाइए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियों से भरे रहिए। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट फ्रॉम रानी क्रिएशन। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशन ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: बेबी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन आप बने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच? ता अगला नाम है जी द रीफ। आई सी 2010 दे विच ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी है। ता कहानी दी जे गल करिए ना तो ऑस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती है जिहड़ी पलटन तो बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नू किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। ते इह फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है किवें शार्क तो बचदे ने, कौन बचता है कौन नहीं बचता, इह सब कुछ तुहानू इस फिल्म दे विच देखण नू मिलूगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफलिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानू देखना पैणा है एमाजोन प्राइम वीडियो।

0: Bincoin. Save, spend, or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers
0: for 10 cents
1: today. माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिनकॉइन कहते हैं. अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है. बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
2: Mixing in the

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसर वाले हम ते चार चे संदेश अलग दिन से बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा है ता अगला नाम है गया जी द शैलो। 2016 विच आई सी फिल्म बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सोहनी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी कहानी मैं तुम दस दिनी है। कहानी विच ना एक कुड़ी तट तो कुछ ही दूरी ते बनी एक चट्टान ते फस जाती है। उसके होर किनारे दे विचकार एक विशाल शाक पैरा देरी हुंदी है। एक छोटी जी दूरी नू पार करना एक रोमांच नाल परी कहानी नू जन्म दिंदा हैगा। ते यही तो इसकी कहानी है कि वह कुड़ी किवें पार करूगी, क्योंकि उत्थे तां शार्क है की है। ये कहानी जो तुसीं देखनी है कि किवें की कुछ होगा, तो इस दे लई तुहानू नैटफलिक्स ते जरूर जाना पैना। यह हॉलीवुड फिल्म हैगी है ते प्राइम वीडियो ते नैटफलिक्स दोनों ते तुसीं इसनू इंजॉय कर सकते हो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत worried हूँ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल vast experience आ। ते law दी entry cases नो handle करन जी ओ expert हन। Criminal law, domestic violence, traffic drug offence विच 12 साल तो वद्दा rich experience। ते conveyance, family law, immigration laws विच भी भारद्वाज and associates दे lawyers दा vast experience आ। And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
12: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
11: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
12: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
11: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
12: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
11: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
12: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
13: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 पर, याद रहे 04006444 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales, inquire at qplatesales.com.au. It's not just an

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: सौ पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों हैप्पी मंडे। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा हैप्पी मंडे कहने की गुस्ताखी मत करना, मंडे और हैप्पी दोनों एक दिशा में जाते नहीं है साथ साथ में। वेल, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एलन मस्क जैसे सपने देखोगे तो आपको मंडे अच्छा लगेगा, आपको तो संडे भी अच्छा लगेगा, सैटरडे मतलब ऑफकोर्स काम करने के लिए अच्छा लगेगा, और ये सारी चीजें होने वाली है। तो दुनिया का पहला ट्रिलियनर मिल गया है हमें, और अगर आप लोगों को अभी भी मोटिवेशन नहीं मिली है तो मुझे नहीं पता कैसे आएगी, लेकिन मंडेज आर फॉर मोटिवेशन, यानी कि एम फॉर मंडे, एम फॉर मोटिवेशन। और मैं यही चाहूंगी कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अगर अभी तक आपने अपना पैर नहीं, कदम नहीं बढ़ाया है तो बढ़ा दीजिए, बिकॉज इफ नॉट नाउ देन व्हेन। जी हाँ, सो इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत होती है हेल्दी रिचुअल के साथ। और वो हेल्दी रिचुअल क्या है? वेल, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, और वही डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमको इस दुनिया की नेगेटिविटी को दूर रखना है, हमको हेल्दी रहना है, और हमको खुशियां बांटनी है, पॉजिटिविटी बांटनी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद पॉजिटिव होना जरूरी है, खुद काम होना जरूरी है, खुद स्ट्रेस से दूर रहना जरूरी है। और वो कैसे होगा? वो होता है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से। तो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा, एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं, एक हैप्पी हैप्पी सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं, और आपको हैप्पी हैप्पी बनाने के लिए हमने भी पहला कदम यहाँ पर ले लिया है, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम के और, यानी कि मौसम क्या कह रहा है, कैसी अंगड़ाई ले रहा है। आइए इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मौसम का हालचाल जानना जरूरी है। हमारा हालचाल कैसा रहेगा काफी डिपेंड करता है मौसम के हालचाल पर। सो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की, और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस तक रहा। जी हाँ, 23 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर। अभी की अगर बात की जाए तो 22.9 डिग्री सेल्सियस के करीब था है टेम्परेचर, और वहीं अगर बात की जाए फील की, रियल फील की, तो 22 डिग्री सेल्सियस के करीब ही है। वहीं बात की जाए बारिश के चांसेस की, तो 30% चांसेस विद 1 mm बारिश होने के चांसेस। जैसे मैंने आपको बताया, एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, और रात में 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के चांसेस हैं। ये है आज की बात, यानी कि मंडे के बाद। अब जरा करते हैं कल की, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात। सो ट्यूसडे को 23 डिग्री सेल्सियस के साथ 60% चांसेस रहने वाले हैं बारिश होने के, या थोड़े से बढ़ जाएंगे आज के मुकाबले। और वेडनेसडे को 20% चांसेस होंगे, मतलब आपको काफी राहत मिल सकती है। बट उसके आगे भी मैं देख पा रही हूँ, मतलब मुझे काफी दिन तक बारिश दिख रही है। मतलब बीच में आपको थोड़ा बहुत क्लियर जो है वो आसमान मिल सकता है, वो भी पूरी तरह क्लियर नहीं मिलेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो बादल तो आपको मिलने ही वाले हैं। सो जो सर्दियों की धूप की तलाश है आपको, उसके लिए आपको थोड़ी मशक्कत तो अभी कुछ वक्त तक करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूँ मुझे वो धूप निकलती हुई ज्यादा अच्छे से नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, सो या ये है हालचाल मौसम का। और कोई बात नहीं, धूप निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलती है तो अच्छे अच्छे कोजी कोजी कपड़े पहनिए, और मैं तो कहती हूँ अंदर दुबक कर बैठ जाइए, क्योंकि सर्दियों में दुबक कर बैठने में जो मजा आता है ना, अंदर अपने ब्लैंकेट में, अपने क्विल्ट में, उसको कुछ बीट नहीं कर सकता। एक अच्छी सी किताब पढ़िए और फिर देखिए वो कोजी कोजी फीलिंग, और वो किताब और वो प्यारी प्यारी स्टोरीज कितना अच्छा फील करवाती हैं आपको। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा सबसे पहले आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए। जी हाँ, आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए, जो कि हमारे इस प्रोग्राम को खास बनाती है, चार चांद लगाती है और बेस्ट पार्ट है हमारे इस प्रोग्राम का। सो आपकी हिस्सेदारी हमें है मंजूर। और यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, हिस्सेदारी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कितने बड़े स्टेक्स तुम हमें दे रही हो यहाँ पर। अरे, कहने का मतलब है हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी होती है, फिर वो कैसे भी। तो आइए, अगर आप कोई मजेदार सा गाना करना चाहते हैं फरमाइश हमारे साथ है इस प्रोग्राम में, तो जल्दी से आ जाइए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि मेरे पास फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, और ये जो फरमाइशें हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना इनको प्ले करने के लिए। लेकिन आप अपनी फरमाइशों को कैसे पहुंचा सकते हो हमारे तक? जी हाँ, हमारे तक, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको फोन उठाना है, आपको नंबर डायल करना है, और वो नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। भेज रहे हैं हमारी तरफ से ये बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। आई नो यू वांटेड टू टॉक अबाउट इट, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज फ्राइडे को जब हम सबका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद अमेरिका में एक चीज होती है और वो है स्पेसएक्स का आईपीओ लॉन्च किया जाता है। एंड गेस व्हाट, एलन मस्क बन जाते हैं दुनिया के फर्स्ट ट्रिलियनर। जी हाँ, अब हम क्या कहें इसके बारे में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मस्क। मतलब स्पेसएक्स एक चीज है, दूसरी चीज है टेस्ला, तीसरी चीज है स्टारलिंक, चौथी चीज है एक्स एआई, और पांचवी चीज है न्यूरोलिंक। मतलब इज देयर एनीथिंग जिसमें आपने पैर नहीं रखा है, जो कि फ्यूचरिस्टिक नहीं है? ओ माय गॉड। सो एलन मस्क, आई डोंट नो इफ यू लाइक हिम और नॉट, बट यू गॉट टू से कि दैट पर्सन हैज अचीव्ड समथिंग जो कि शायद लोग सपना भी नहीं देख सकते थे। मतलब मैं अभी भी कहूंगी कि उनके और वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन के बीच में जो मार्जिन है, जो डिफरेंस है नेटवर्थ का, वो इतना ज्यादा है कि वो अगर भाग भाग कर भी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सेकेंड वाले, तो भी वो फर्स्ट नहीं पहुंच पाएंगे, नंबर वन नहीं बन पाएंगे। नाउ एक और चीज, बहुत ही मजेदार सी चीज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एलन मस्क कुड स्पेंड $1 million एवरी डे एंड स्टिल नीड 2740 इयर्स टू गेट थ्रू दैट 1 trillion दैट ही अर्नड। या मतलब वो बंदा ऐसा है कि अगर वो हर दिन 1 million भी खर्चेगा ना, तो भी वो जितना पैसा, जितनी वेल्थ एक्यूमुलेट उन्होंने की है, उसको खर्च करने के लिए, हर दिन 1 million खर्च करते हुए भी उसको खर्च करने के लिए उन्हें 2740 साल लग जाएंगे। 2740 साल, मतलब मैं क्या कहूँ इस बारे में, आई डोंट नो वट टू से टू दैट। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इफ एलन मस्क कुड डू इट, I think other people can also do it. It's just that you need some planning, you need the ambition. एक ऐसा ambition आपको पास चाहिए जिसको दुनिया तो पहले ऐसे सोच के, देख के ऐसा बोले कि ओह, ये हो भी सकता है, like what are you talking about। अब एलन मस्क के साथ हमेशा यही होता था, क्योंकि जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी, तब लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे। गैराज से शुरुआत हुई थी, आज उसकी वैल्यूएशन जो है वो 1 trillion से ज्यादा पहुंच गई है। जी हाँ, मतलब आप खुद ही सोच लीजिए कि एलन मस्क ने उस गैराज से निकलकर कहां तक का सफर तय किया है, और ये कोई बहुत साल पहले की बात नहीं है, मतलब मैं ये कहूंगी कि ये 20 साल पहले तक की भी बात नहीं है। जी हाँ, मतलब ये है कुछ 16 साल पहले की बात। सो आप सोच सकते हो 16 साल में किसी की वर्थ, किसी की नेटवर्थ, किसी की जो कमाई है, वो इतनी कैसे बढ़ सकती है? Well, it is what it is. And again, congratulations to Mr. Musk again. आपको बहुत बहुत बधाई, और हम इतना ही कहेंगे कि अच्छे काम में इन पैसों को लगाइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान को आपने गद्दी पे बिठा दिया, उसके लिए हम आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप अच्छी चीजों में इन पैसों को खर्च करेंगे, तो वी वॉन्ट माइंड। जी हाँ, थैंक यू। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त भी हो गया है। ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है आई लव यू और ये है अलमास नायाब का गाना। जी हाँ, खूबसूरत लग रहा है गाना, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइटल जो है और ऊपर से जो सिंगर है, मुझे लगता है गाना काफी खूबसूरत है। मैंने सुना नहीं है अभी और पहली बार मैं सुनूंगी, सो ऑफकोर्स आप भी पहली बार सुनिए अगर आपने पहली बार सुनना है, और ऑलरेडी सुना है फिर तो अलग बात है। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत खूबसूरत गानों को फरमाइश करने के लिए और नए नए गानों से हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई मीन दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हम इसे सुनने वाले हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी सिंगल हो और काफी टाइम तक सिंगल रहना चाहते हो और आप भी उन क्वेश्चन से परेशान हो गए हो जहां पर लोग आपको कहते होंगे अरे सब कुछ तो ठीक है, मतलब सब कुछ तो है, वाई आर यू स्टिल सिंगल, तो आपको एक जवाब देना है। सो इसके लिए मैं पूरी सिचुएशन जो है वो आपके सामने बोलने वाली हूँ, जी हाँ, जो कि आपके सामने लोग बोल सकते हैं और उसके बाद आपको कैसे कमबैक करना है। जी हाँ, तो कोई अगर आपका कहता है व्हाई आर यू सिंगल, यू आर अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, केयरिंग, काइंड एंड क्रिएटिव, तो उसके बाद अगर आप सिंगल हो और सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हो काफी वक्त तक, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि ओह, आई एम ओवर क्वालिफाइड, या दैट्स व्हाई आई एम सिंगल, आई एम ओवर क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल, पीरियड, माइक ड्रॉप, दैट्स इट, दैट्स इट, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। जी हाँ, यू नो व्हाट द थिंग इज, कि बहुत सारे मिलेनियल्स जो है वो इन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं काफी टाइम से। सो अगर आप ये कहते हो कि मुझे शादी नहीं करनी है या मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, आई डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप या वट एवर, मतलब ये सारी चीजें बोलने से ना सामने वाला चुप नहीं होता है। तो मैं क्या कहती हूँ, एक ही चीज करनी है आपको, सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी है, एक सेंटेंस बोलना है, वहीं पर माइक ड्रॉप मोमेंट जो है वो हो जाएगा आपका। सो अगर आपको कहेगा, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कहेगा वाई आर यू सिंगल, यू आर अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, केयरिंग, काइंड एंड क्रिएटिव, तो सीधा सीधा आपको सिर्फ इतना बोलना है, आई एम ओवर क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल। I think that answers your question, right? yeah, that's all you need to say. Yahan par ek aur gana aap sabke liye meri taraf se.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है। आई डोंट नो, पर शायद आप सोशल मीडिया अगर चलाते हो तो शायद आपने इस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा कि कैसे ब्राजील में एक 20 साल की लड़की ने बंजी जंपिंग करते हुए अपनी जान खो दी। जी, आप लोग बोलोगे बंजी जंपिंग करते हुए उसने जान खो दी, ये मतलब हाउ डिड दैट हैपन। So, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि जो लोग उसे बंजी जंपिंग करवा रहे थे वो उसकी सेफ्टी रोप ही लगाना भूल गए। मतलब आप लोग बोलोगे कि ये क्या पागलपंती है, ये क्या बकवास है, मतलब सेफ्टी रोप कोई कैसे भूल सकता है। मतलब वो लिटरली उसको उठा के लेके गए दो व्यक्ति और वो उस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार थी, बट जो उन्होंने देखा नहीं वो ये था कि जो रोप थी, जो कि सेफ्टी रोप थी, जो कि बेसिकली बंजी जंपिंग करते वक्त आपको पकड़ लेती है, आपको होल्ड करके रखती है जब आप जंप करते हो, और आपको लिटरली या किसी को भी जो है वो मरने नहीं देती है। सो ऐसे में उस लड़की को फेंक दिया गया, और जब फेंक दिया गया ऊपर ब्रिज से तो उन्होंने रियलाइज किया, अरे सेफ्टी रोप तो बांधी नहीं गई थी। मतलब कोई किसी की जान से कैसे खेल सकता है और कोई खुद अपनी जान के साथ कैसे खेल सकता है, मुझे नहीं समझ आया। जी हाँ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। एंड गेस व्हाट, ब्राजील गवर्नमेंट ने उस ब्रिज को पहले ही यू नो आउट ऑफ लिमिट्स कर दिया था, मतलब ऑफ लिमिट्स कर दिया था, वहां पर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम ने किसी ना किसी तरह लोगों को कन्विंस कर लिया कि अगर वहां पर आपने जिंदगी में सारे एडवेंचर कर लिए और उस ब्रिज से नहीं कूदे तो जिंदगी में क्या किया। अगर ये सारी चीजें जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या किसी भी यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और हम उनको करने के लिए एकदम से रेडी हो जाते हैं बिना किसी अच्छे से जांच परख के, वो कितनी खतरनाक हो सकती है ये हमें पता चलता है। अब मतलब जो सबसे, जब कोई इसके बारे में सुन रहा है तो सबसे पहले एक ही बात बोल रहा है कि हाउ कुड समवन बी सो फुलिश। कोई कह रहा है अरे नहीं, उसकी मृत्यु आ गई थी, अब जो होना था वो तो होना था। अरे भाई, मतलब जो सिचुएशन थी, सबसे पहले उस ब्रिज पे जाना जो है वो मना था, लेकिन फिर भी लोग जो है वो गए, वहां पे बंजी जंपिंग चल रही है, ऊपर से लड़की को पकड़ के आप एकदम उठा के उसको नीचे फेंकने के लिए तैयार हो, लेकिन सेफ्टी रोप लगाई नहीं है। लाइक हाउ इन द वर्ल्ड कैन समवन डू इट। सो या, मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आप लोग भी एडवेंचर्स के बहुत ज्यादा शौकीन हूं, जो कि मैं खुद भी हूं, आई ऑल्सो लाइक बंजी जंपिंग, आई ऑल्सो लाइक पैराग्लाइडिंग, आई ऑल्सो लाइक यू नो स्काई डाइविंग, एवरीथिंग आई लाइक, बट स्टिल मैं इतना कहूंगी कि नो मैटर हमें ये चीजें कितनी भी पसंद हो, नो मैटर ये कितनी भी ग्लैमरस दिखती हो, हमारी बकेट लिस्ट में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब तक आप किसी अच्छी जगह से ये ना करो जहां पर अच्छे से करवाया जाता है, जो सर्टिफाइड जगह हो, जी हाँ, उससे पहले किसी भी ऐसे अनाड़ी जगह से करने की कोशिश भी नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टंट होते हैं और बहुत ही डेडली स्टंट्स होते हैं। सो ऐसे में अगर कोई ऐसा नौ सीखिया आपको ये करवाएगा, या जो सर्टिफाइड कंपनी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो फिर सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो सकती है। एंड आई थिंक ब्राजील में हुआ ये इंसिडेंट बहुत ही बड़ा लेसन है। आई नो वी ऑल लव एडवेंचर्स, और अगर हमें वो एडवेंचर करने हैं तो हमें किस तरह से उन्हें करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखने की जरूरत है, खासकर इस ब्राजीलियन इंसिडेंट के बाद, जहां पे सिर्फ 20 साल की लड़की, या उसकी सिर्फ उम्र सिर्फ 20 साल की थी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
12: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
14: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
15: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
14: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
15: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
14: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
15: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
14: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
15: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बता देते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि आ गई है OTT प्लेटफॉर्म पे और आप उसे अपने काउच के कंफर्ट के साथ देख पाओगे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूली रिलीज्ड मूवी भूत बंगला. जी हाँ. तो दोस्तों, भूत बंगला जो है वो नेटफ्लिक्स पर आ गई है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये मूवी के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ. जी हाँ, आप इसे पूरा रिव्यू भी समझ सकते हैं. सो भूत बंगला जो है एक हॉरर कॉमेडी है जो कि अक्षय कुमार की मूवी है. इसमें आपको तब्बू भी मिलने वाली है, इसमें आपको वामिका गाबी भी मिलने वाली है और इसमें आपको और भी बहुत बड़े बड़े सितारे मिलने वाले हैं. मतलब आपको परेश रावल मिलेंगे, आपको राजपाल यादव मिलेंगे, आपको बहुत सारे वो एक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने उन लेजेंडरी मूवीज को क्रिएट किया है, लाइक चुप चुप के, लाइक हेरा फेरी, भागम भाग. सो ये वाली स्टारकास्ट जो है वो आपको इसमें काफी अच्छे से नजर आने वाली है. एंड गेस व्हाट, भूत बंगला को पुराने टाइप की कॉमेडी के जैसा बनाया गया. मतलब जैसे आपने पुरानी मूवीज देखी थी तो उसमें जैसी कॉमेडी होती थी, वैसी ही कॉमेडी यहाँ पर की जाएगी, यानी कि करने की कोशिश की गई है. सो अक्षय कुमार आ गए हैं, उनकी मूवी जो है उसका रन, थ्रेटिकल रन जो है वो खत्म हो गया और नेटफ्लिक्स पे आ गई है. हॉरर है लेकिन उतनी हॉरर नहीं है, बल्कि डर आपको लगेगा भी नहीं, ना के बराबर होगा, और साथ में कॉमेडी भी है लेकिन मैं कहूंगी कि उतनी स्ट्रांग कॉमेडी नहीं है जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. सो या बट बाकी सारे एक्टर्स जितने भी है, राजपाल यादव और परेश रावल और बाकी सब, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है. आई मीन दे आर द सीजनड एक्टर्स एंड यू कैन टोटली इमेजिन कि कैसी एक्टिंग उन्होंने की होगी. बाकी की चीज आप खुद देखिए और खुद डिसाइड कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी. एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही थी वो ये कर रही थी कि अक्षय कुमार को ये रोल उतने अच्छे से सूट नहीं कर रहा था. मतलब अक्षय कुमार इतने यंग इसमें दिख नहीं रहे हैं. सो वो अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड गेस व्हाट, जब वो यंग है तभी वो अपने आप को ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब एटलीस्ट किन्हीं यंग एक्टर्स को आप ले सकते हो अपना रोल वो वाला प्ले करने के लिए, लेकिन आप यंग वर्जन में भी खुद को प्ले कर रहे हो और ओल्डर वर्जन में भी खुद को प्ले कर रहे हो. दैट वाज अ बॉदरसम सिचुएशन. अदर देन दैट इट वाज अ गुड वन टाइम वॉच मूवी दैट यू कैन लिटरली एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. या विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो या गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो ऑन द नेटफ्लिक्स यू कैन एंजॉय भूत बंगला. इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि कैसे जो पीस डील है ईरान के साथ वो हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल गया है, सारे के सारे शिप्स जो है वहां पर आराम से निकल सकते हैं, कोई टोल नहीं लगेगा। और जो ईरान के साथ उनका जो पीस डील हो रहा था, जिसके बारे में बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, वो अब फाइनली हो गया है। आप लोग बोलोगे कि अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी और ने भी कहा है? वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन अभी के लिए यही सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। अब जो गैस, ऑयल और जितनी भी एनर्जी वाली जो सिचुएशन है, जो शिप्स हैं, एनर्जी कैरियर शिप्स जो हैं, वो आराम से वहां से पास थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब तक ईरान इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, सबसे पहले ये वाली बात तो हो गई है और मैं कहूंगी, और मैं इनफैक्ट आई होप सो कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करके कहा है कि कैसे ये पीस डील जो है वो साइन हो गई है। जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे, लग तो रहा था कि थोड़ा सच हो सकता है, बट कितनी सच्चाई है, विल सी टू दैट। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: Some numbers carry weight beyond what you see.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है अनाउंस, लेकिन यहाँ पर अब जरा बात करते हैं ईरान की, क्या स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से, उसके बारे में बात करते हैं। सो ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच घोषित समझौते के 14 बिंदुओं की जानकारी होने का दावा किया है। हालांकि इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अब तक किसी भी देश की ओर से नहीं की गई है। ईरान के अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक प्रस्तावित बिंदुओं में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम का मुद्दा है सबसे पहले। इसके अलावा इन बिंदुओं का भी जिक्र किया गया है, आइए जरा आपको उसके बारे में बताते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिबद्धता, जी हाँ 30 दिनों के भीतर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना। तीसरा, ईरानी क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। चौथा, ईरानी व्यवस्था के तहत 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। पांचवा, अमेरिका और उसके सहयोगी की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब की योजनाएं। वहीं ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना। उसके अगला, परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराना। वहीं अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाना और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की भी प्रतिबद्धता है। जी हाँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये केंद्र बिंदु बने हुए हैं इस समझौते का। मेहर न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया है कि अंतिम वार्ता अब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा रिलीज नहीं किया जाता, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित नहीं किए जाते और नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई जाती। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो ईरान ने कहा है, लेकिन साथ में ईरान ने एक और चीज भी कही है जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे एक और खूबसूरत सा गाना जो कि अगेन एक फरमाइशी गीत नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे लिसनर्स के लिए ही है क्योंकि ये हमारे गाना हमारे लिसनर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है। गाने का नाम है इंतजारी और ये है आर्टिकल 15 का गाना।

जी हाँ दोस्तों, वही ईरान की शीर्ष कमान ने कुछ भी कह दिया है। जी हाँ, ऑफकोर्स जो ये पीस जो है वो टॉक जो है वो पूरी हो गई है, समझौता भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका और ईरान के इस समझौते के बाद ईरान अपनी शेकी मारने से पीछे नहीं हट रहा है। सो शीर्ष कमान, सैन्य कमान जो है ईरान का, उन्होंने कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाओं और क्षेत्र में तेहरान के सहयोगी समूहों ने अमेरिका और इसराइल को ये दिखा दिया है कि उनके पास हार स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। खातम अल अबनिया अनबिया का यह बयान ईरान के सरकारी टेलीविजन के रुख के मुताबिक है। ईरानी सरकारी टेलीविजन इस समझौते को ईरान की जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। समझौते का विरोध करने वाले कट्टरपंथी धड़ों की ओर से ईरान के भीतर आलोचना भी बढ़ रही थी। जी हाँ, समझौते की आलोचना करने वाले कुछ लोगों ने ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अराग्ची और संसद के स्पीकर बगर गलीबाफ पर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया है। जी हाँ, चलिए ये तो ईरान की खिचड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर के लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया भर की कंट्रीज क्या बोल रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था और अब कहीं ना कहीं दुनिया की सारी कंट्रीज जो हैं वो ऑफकोर्स चैन की सांस ले सकती है, एक्सेप्ट इसराइल, बिकॉज इसराइल वॉन्टेड द वॉर टू बी कंटिन्यूड, सो ऑफकोर्स वो नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा जो चाहते थे वो ऑयल, वो गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलता हुआ, वो तो खुश हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन देश के नेताओं ने क्या क्या कहा। सबसे पहले इन देशों के नेताओं ने कहा कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए काम करेंगे। जी हाँ, इन E4 समूह के नाम से जाने वाले इन देशों ने कहा कि हम इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरान सरकार और इसमें शामिल सभी पक्षों को बधाई देते हैं, जिनमें पाकिस्तान, कतर और अन्य सभी मध्यस्थ शामिल हैं। जी हाँ, सो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं की तरफ से ये कहा गया है। उन्होंने समझौते को तेजी से और पूरी तरह लागू किए जाने की अपील की। अब समझौता तो हो गया है, लेकिन लागू होगा या नहीं होगा वो एक डिफरेंट बात है, क्योंकि समझौते तो पहले भी हुए लेकिन समझौते ब्रीच हो गए, वो एक डिफरेंट बात है। सो यहाँ पर ये जो है वो कहा गया। वही ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ से भी कुछ कहा गया, विच आई एम गोना टॉक अबाउट, लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता तो हुआ है, आई मीन लिखित समझौता तो हो गया है, वो लागू होता है, एग्जीक्यूट होता है या नहीं वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वहीं इसी के साथ दुनिया भर के देश जो हैं वो उस पर बधाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच घोषित समझौते पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वहीं पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने भी कह दिया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साथ में जापान और साथ में न्यूजीलैंड की तरफ से भी कहा गया है। सो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं की ओर से एक संयुक्त बयान जारी होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जापान की प्रधानमंत्री सनाया तकाइची

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की प्रतिक्रिया भी आ गई है। जी हाँ, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने की घोषणा का स्वागत किया है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि यह संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइशी ने भी इस समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जापान को पूरी उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी और ईरान के परमाणु मुद्दे समेत अन्य मामलों पर अंतिम समझौता जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता मजबूत और स्थायी शांति की ओर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा, हालांकि पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा, लेकिन इस अहम व्यापारिक मार्ग को फिर से खोलना ऊर्जा कीमतों और अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए जरूरी है, जिसमें हमारा क्षेत्र भी शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे निर्णायक और रचनात्मक समझौता बताया है। सो अभी के लिए खुशखबरी तो है भाई, सेलिब्रेट तो सबको करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस पैदा किए गए थे ईरान के द्वारा, प्लस एनर्जी क्राइसिस की अगर बात ना भी करें, सिर्फ बात करें लोगों की जिंदगी की, जी हाँ, बहुत सारे लोगों की जान वहां पर जा रही थी उस सिचुएशन में, वो अब ठीक होने की उम्मीद है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि समझौता यहाँ पर पेपर्स पे तो हो गया है, कागजी तो हो गया है, लेकिन वो लागू होना अभी बाकी है, रियल में लागू होना अभी बाकी है, और उसके बाद ही बाकी की सिचुएशन अभी ठीक से समझ आएगी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ और भी। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि अब क्या बताना चाहती हो। वेल, ये खबर आई है बॉलीवुड की तरफ से, और बॉलीवुड में जो रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का बवाल चल रहा था, उसका सॉल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पूनम ढिल्लों को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। आप लोग बोलो कि पूनम ढिल्लों को इसका क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली बवाल क्या था। सो बेसिकली रणवीर सिंह ने धुरंधर के बाद डॉन 3 में काम करने से मना कर दिया था, और डॉन 3 का प्रेप वर्क जो है वो ऑलमोस्ट हो गया था, और उस वजह से काफी खर्चा भी हो गया था। अब ऐसे में जब उन्होंने मना किया, तो वहां पर फरहान अख्तर और जोया अख्तर, जो कि इसके प्रोड्यूसर्स थे और साथ में डायरेक्टर भी थे, उनको ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। उन्होंने सबसे पहले तो उन पर केस कर दिया, और उसके बाद एक फिल्म कमेटी की तरफ से उन्हें बैन करवाने की सोची। इनफैक्ट सब लोगों को हिदायत दी गई कि कोई भी रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो रणवीर सिंह ने इसके लिए अच्छा सा कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने फरहान अख्तर के साथ समझौता करने की कोशिश किया, जो कि वर्कआउट नहीं हुआ, और यहां पर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। फिर रणवीर सिंह ने सीधा उस अथॉरिटी को जो कि बैन करने के लिए कह रही थी रणवीर सिंह की, उस पर जो है उन्होंने क्वेश्चनेबल जो है यहां पर नोटिस भेज दिया कि आपके पास अथॉरिटी है भी या नहीं, मतलब आप किसी को कैसे रोक सकते हो। बस फिर क्या था, यहां पर पूनम ढिल्लो जो कि अगेन एक अथॉरिटी से आती हैं, जो कि एक कमेटी है फिल्म इंडस्ट्री की ही, उन्होंने कहा कि हमने इस चीज का जो है वो समाधान निकाल दिया। अब जो है वो फरहान अख्तर जो है वो केस नहीं करेंगे, वो बैन भी हट गया है, और ये सारी चीजों का सॉल्यूशन जो है वो हो गया है। पूनम ढिल्लो यहां पर यह भी कहती है कि रणवीर सिंह के पिताजी जो है वो वहां पर उनके पास पहुंचे थे, और उन्होंने उनको मध्यस्थता कर उनके साथ ये समझौता करने में हेल्प की। जी हाँ, यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि रणवीर सिंह के फादर बहुत ही ज्यादा थैंकफुल थे पूनम ढिल्लो और उनकी जो है जो कंपनी है, उनकी जो वो सोसाइटी है, उसके लिए कि उन्होंने रणवीर के लिए ये अच्छे से काम किया। अब ऐसे में रणवीर सिंह क्या डॉन 3 करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी भी क्वेश्चनेबल है, और क्या फरहान अख्तर अभी भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात तो पक्की है, धुरंधर के बाद जो नैरेटिव सेट हो गया है, रणवीर सिंह का जो नैरेटिव सेट हो गया है, पीपल जस्ट लव हिम। और इनफैक्ट फरहान अख्तर सही है या गलत है वो बात डिफरेंट है, लेकिन यहां पर लोग रणवीर का ही साथ दे रहे थे। जी हाँ, आप कह सकते हो, और या कोई और भी कह सकते हैं कि ये PR स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर जो धुरंधर के बाद और धुरंधर द रिवेंज के बाद रणवीर सिंह ने अपनी पॉपुलैरिटी को एक आयाम दिया है, वो लिटरली इनसेन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सबके सब जो है वो रणवीर सिंह की सपोर्ट में आ गए थे। ऑफकोर्स फिल्म फ्रेटर्निटी को बायकॉट करने पर आ गए थे। लोगों ने कहा कि ओके ठीक है, रणवीर सिंह को अगर बायकॉट किया जाएगा तो हम बॉलीवुड को बायकॉट कर देंगे। इमेजिन कीजिए, रणवीर सिंह अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर लोग उन्हें लिटरली पूजने लगे हैं। जी हाँ, what do you think about it? जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज है जन्मदिन एक अभिनेत्री का जो बेसिकली हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी वो स्माइल, उनकी वो खूबसूरती और उनका वो टैलेंट आज भी हम याद रखेंगे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि किसका बर्थडे है, क्या आप गेस कर सकते हो? चलिए मैं आपको गेस करने के लिए ये टॉपिक जो है वो दे रही हूँ, मैं हिंट जो है वो आपको दे चुकी हूँ कि देवानंद की जिंदगी की जो सबसे बड़ी मोहब्बत रही है वो वही अभिनेत्री रही है। जी हाँ, और अगर आपने देवानंद के बारे में थोड़ा सा भी सुना, उनके इंटरव्यूज को सुना है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है अपना इजहार मोहब्बत किया उस अभिनेत्री के लिए। बहुत पुरानी अभिनेत्री वो है, वो गा भी सकती थी और वो एक्ट भी कर सकती थी, और उनकी खूबसूरती ऐसा कहा जाता था कि वो हंसती थी तो फूल खिल जाते थे और जब वो चलती थी तो बहारें आ जाती थी। जी हाँ, अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकती, और अब आपको गेस करना है किसके बारे में बात हो रही है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगी उन्हीं का जो है उन्हीं की मूवी का कोई गाना। जी हाँ, और यहाँ पर जो गाना है वो खूबसूरत है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है अभिनेत्री वो बहुत ज़्यादा पुरानी अभिनेत्री है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पुरानी, और देवानंद साहब के साथ उन्होंने काम भी किया है, और जो गाना मैं सुनाने वाली हूँ वो आप सुन लीजिए और फिर आप गेस कीजिए, उसके बाद हम बाकी की बातें करते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी और बातें करने का मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो सुनते हैं ये गाना जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में है, और देवानंद साहब ही हैं इस मूवी में, और इस मूवी में देवानंद साहब के साथ ही हैं वो भी अभिनेत्री जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो सुनते हैं इस गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे, और अभी मचा दूं शोर तो बोलो

मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा।

जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि मधुबाला की बात कर रही हो क्या? वेल, मधुबाला का तो दूसरा गाना था, मधुबाला से पहला वाला गाना जो था वो उन्हीं का था, और मैं बात कर रही हूँ सुरैया की। जी हाँ, सुरैया की बात हो रही है यहाँ पर। आज उनका जन्मदिन है और मैं कहूंगी कि क्या खूबसूरत लेडी रही है वो। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि देवानंद ने जब सबसे पहले सुरैया को देखा था, वो इतने ज्यादा दीवाने हो गए थे सुरैया के कि उसके बाद उन्हें ना कुछ दिख रहा था, ना कुछ वो सोच पा रहे थे, ना कुछ वो कर पा रहे थे, वो सिर्फ सुरैया के बारे में ही सोचते रहते थे। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आप शायद नहीं जानते हैं कि सुरैया को भी देवानंद साहब पसंद थे। देवानंद साहब बताते हैं एक इंटरव्यू में कि मैं अभी बहुत ही नया नया एक्टर बना था, ठीक, मैं जूनियर आर्टिस्ट भी रहा। जी हाँ, अभी नए नए मुझे रोल्स मिलने शुरू हुए थे और सुरैया जो है वो तब ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश एक्टर थी। जी हाँ, मतलब सुरैया वॉज अ सुपरस्टार बैक देन जब देवानंद साहब ने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, वो पहले से ही सुपरस्टार थी। कहते जब सुरैया आती थी सेट पर तो लोग जो है वो काम करना छोड़ देते थे, लोग जो है वो बस सुरैया को ही देखते रहते थे, और जब मैंने सुरैया को पहली बार देखा, बस वो पहली नजर की ही मोहब्बत थी, मैं उनके ऊपर से नजरें नहीं हटा पाया अपनी। जी हाँ, उसके बाद इन दोनों का बहुत ही खूबसूरत जो है वो रिश्ता शुरू भी हुआ। सुरैया की दादी और उनकी फैमिली को जो है वो प्रॉब्लम थी इस शादी से, और इसलिए वो शादी नहीं कर पाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवानंद साहब ने इनफैक्ट अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने तो अंगूठी तक सुरैया को दे दी थी। जी हाँ, अंगूठी तक सुरैया को दे दी थी, वो उनके इंतजार में थे, उनके जवाब के इंतजार में थे कि क्या वो उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन घर वालों की मर्जी उसमें नहीं थी, वो नहीं चाहते थे देवानंद से वो शादी करे, क्योंकि देवानंद उस वक्त बहुत बड़े स्टार नहीं थे और सुरैया और उनके बीच में धर्म का भी कुछ जो है वहां पर सिचुएशन थी, जिसकी वजह से उनके घर वाले नहीं माने और देवानंद साहब को अपनी मोहब्बत का त्याग करना पड़ा। यहाँ पर इस बारे में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले आपको मैं एक और खूबसूरत सा गाना सुनाऊंगी जो कि सुरैया का ही है।

जिया दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये बात आपने सुनी। जी हाँ, अब मुझे एक्चुअली जब सबसे पहले मैंने सुरैया के बारे में जानना शुरू किया था, वो मैंने सुरैया की पिक्चरों के साथ उन्हें जानना नहीं शुरू किया था। जब मैंने सुरैया के बारे में सबसे पहले सुना था, वो देवानंद साहब से सुना था। जी हाँ, मुझे आज भी याद है, मैंने पहली बार देवानंद साहब का वो इंटरव्यू देखा था। और जब उनसे पूछा गया कि क्या देवानंद साहब, क्या आप किसी औरत के लिए रोए हो, तो देवानंद साहब ने कहा कि आपको जान के बहुत ही अजीब लगेगा और शायद आपको ये बात पता भी नहीं है और मुझे कोई शर्म भी नहीं है इसे बताने में और मैं ऐसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। इस दुनिया में सिर्फ एक ही औरत हुई है जिसके लिए मैंने आंसू बहाए हैं और मैं बहुत रोया हूँ, सीरियसली रोया हूँ, और वो थी सुरैया। मैं अपनी बीवी के लिए नहीं रोया, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं रोया, मैं अपनी जिंदगी में किसी इंसान के लिए नहीं रोया, लेकिन मैं सुरैया के लिए रोया। जी हाँ, जब मुझे हार्ट ब्रेक मिला वहां पर, तो मैंने आंखों से आंसू बहाए हैं, लिटरली आंखों से आंसू बहाए हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद जब मैंने मूव ऑन किया, उसके बाद मैं किसी के लिए भी नहीं रोया। जी हाँ, देवानंद साहब के मुंह से यह सुनना कि उनको किसी से मोहब्बत थी, वो इतनी खूबसूरत थी, ऐसी थी वैसी थी, फिर उसके बाद सुरैया में मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा जाग गया। जब मैंने उनके बारे में देखा, पढ़ा, उनकी मूवीज को देखने की कोशिश की और वो सब, तो मुझे पता चला कि वाह, मतलब वो तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ी सुपरस्टार रही हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं मधुबाला के बारे में, हम बात करते हैं मीना कुमारी, नरगिस और ये सब, लेकिन इनसे पहले जो ऑलरेडी सुपरस्टार रह चुकी थी वो थी सुरैया। उनकी मूवीज, और जैसे मैंने कहा कि उनकी जो गायकी है, ये जो आपने अभी गाना सुना, तू मेरा चांद में तेरी चांदनी, ये जो ये वाला जो पार्ट है, जो लड़की वाला पार्ट है, वो सुरैया ने खुद गाया। मतलब एक ऐसी लेडी जो गा सकती है, जो एक्ट कर सकती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी लग सकती है, कौन इससे मोहब्बत नहीं करेगा। और देवानंद साहब की सबसे पहली मोहब्बत यही लेडी है, और वो उन्हें अपनी आखिरी मोहब्बत भी बनाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी और किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया। जी हाँ, लेकिन ये कहना, और इनफैक्ट मीडिया के सामने कहना, टेलीविजन में, नेशनल टेलीविजन पे कहना, माइक के सामने कहना कि इस दुनिया में मैंने सिर्फ एक ही लेडी के लिए आंसू बहाए और वो सुरैया थी। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि सुरैया कितनी खूबसूरत होंगी, लेकिन वो उतनी ही अच्छी शख्सियत की भी थी। जी हाँ, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ना सिर्फ वो अच्छी एक्ट्रेस थी, ना सिर्फ वो अच्छी सिंगर थी, बल्कि वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही काइंड पर्सन भी थी। And that was also the reason Devanand Saab was so in love with her. जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि अगेन एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है सुरैया का ही, और इसका नाम है लाई खुशी। जी हाँ, लाई खुशी की दुनिया। और ये खूबसूरत सा गाना जो है, वो अगेन जो ये गाना है सुरैया का है, और इसे मुकेश ने गाया हुआ है। और अगर हम फिल्म की बात करें, तो इसमें देवानंद साहब हैं, इसमें सुरैया है, इसमें मदनपुरी है, इसमें कुकू है, और इसमें गुलाम मोहम्मद साहब भी हैं, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और ये 1948 में आई थी, मतलब वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 50s, वी आर टॉकिंग अबाउट 40s। जी हाँ,

0: की दुनिया हंसती हुई जवानी लाई खुशी की दुनिया.
1: To enjoy evergreen melodious songs from over the years.
2: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मिलना होगा कल. आई होप आपने इंजॉय किया हो आज का प्रोग्राम. आपकी फीडबैक हमेशा वेलकम है और मैं यही कहूंगी कि इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को. हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए. आज मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट दुनिया से एक पॉजिटिव खबर आई है कि समझौता जो है वो ईरान और अमेरिका का हो गया है. आई होप वो पेपर्स का ही ना हो, वो रियल में हो और उसके बाद जो है वो शांति बहाल हो. बिकॉज वी नीड पीस इन दिस वर्ल्ड. मतलब हमको और कोई बहुत ज्यादा झड़पें नहीं चाहिए, हमको पीस चाहिए, हमको अच्छी चीज चाहिए. लोग ट्रैवल कर पाए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, लोगों को डर ना लगे कि ओके अगर वो किसी दूसरी कंट्री चले गए तो वो वापस भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे. मतलब ये इतनी ज्यादा यू नो नेगेटिव सिचुएशन है, इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है जब भी ऐसे कोई वॉर की सिचुएशन होती है, कोई कंट्री किसी के साथ वॉर में होती है, तो उससे बहुत ज्यादा असर होता है. और यहां तो लिटरली इस वॉर का असर हर जगह दुनिया के हर इस कोने में हुआ है. जी हाँ, सो मैं यही कहूंगी कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा करते रहे और पेपर्स के बजाय इसको एग्जीक्यूट करें. शांति बहाल हो, हम सब खुश हों, हमारे खाने के लिए खाना हो और हमारे एंजॉय करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हों. ऐसी लाइफ सबको मिलनी चाहिए. जी हाँ, दैट्स अबाउट इट. एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए. और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है. जी हाँ, ये फरमाइशी गीत जो है वो है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से. और उन्होंने कहा, बात करते करते, कि कैसे उनके दिमाग में ये गाना आ गया एकदम से. देवानंद साहब का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे तो देवानंद साहब की जिंदगी की गाथा भी ये बताता है ये गाना. और उनका उनकी मूवी का भी है ये गाना. उनकी मूवी जो है जो खूबसूरत है हम दोनों 1962 में ही आई थी, उसका ये गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. और आपको एक और चीज बता दूं कि देवानंद साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये गाना सिर्फ गाना नहीं है उनकी फिल्म का, ये उनकी जिंदगी की गाथा है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे ही जिया है जैसे वो यहाँ पर बता रहे हैं. दैट्स अबाउट इट. मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बाकी से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, आई एम सो वरीड। Actually want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से क्वींस टाउन के लिए नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। जी हां, ब्रिस्बेन के ट्रैवलर्स के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर है। जेट स्टार एयरलाइंस ने आज यानी 15 जून से ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से सीधे क्वींस टाउन के लिए अपनी नई डायरेक्ट और नॉन स्टॉप फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी है। इसी के साथ ब्रिस्बेन सीबीडी में $11 मिलियन की बड़ी प्रॉपर्टी डील। जी हाँ, ब्रिस्बेन के रियल एस्टेट मार्केट से आज की एक बड़ी खबर आई है। एलिजाबेथ स्ट्रीट पर स्थित एक बहुत मशहूर रिटेल और एंटरटेनमेंट बिल्डिंग को एक प्राइवेट इन्वेस्टर ने $11.5 मिलियन में खरीद लिया है। इस बिल्डिंग में कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट और ड्रीम कैरियोके जैसे बड़े ब्रांड्स चलते हैं। इसी के साथ ब्रिस्बेन ब्रोंकस पर मंडराया फाइनल से बाहर होने का खतरा। ब्रिस्बेन के रग्बी लवर्स के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। एनआरएल प्रीमियरशिप के राउंड 15 में साउथ सिडनी रॉबिटोस के खिलाफ मिली 48-6 की करारी हार के बाद ब्रिस्बेन ब्रोंकस की टीम पर इस सीजन के फाइनल्स की रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स के लिए स्प्रिंटर्स पर खास रिसर्च शुरू। जी हां, साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक्स को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आज एक नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आई जिसमें देश के सबसे तेज एथलीटों की स्पीड और परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए साइंटिफिक तरीकों पर काम किया जा रहा है। वहीं क्वींसलैंड सरकार का बड़ा फैसला, गेम डेवलपर्स को मिलेगी बड़ी आर्थिक मदद। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के टेक और गेमिंग सेक्टर के लिए आज सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं। सरकार ने आज एक विशेष गेम्स ग्रांट प्रोग्राम की घोषणा की है जिसके तहत स्थानीय वीडियो गेम डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। इसी के साथ ब्रिस्बेन सिटी हॉल आज रात चमकेगा गोल्ड और ग्रीन रोशनी से। अगर आप आज रात ब्रिस्बेन सिटी के आसपास हैं तो सिटी हॉल का नजारा देखना मत भूलिएगा। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने घोषणा की है कि आज रात पूरे सिटी हॉल को खूबसूरत ग्रीन और गोल्ड रंग की लाइट से रोशन किया जाएगा। ये स्पेशल लाइट अप आज शहर में आयोजित होने वाली एक भव्य सिटीजनशिप सेरेमनी के सम्मान में किया जा रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की मुख्य खबरों की तरफ। जी हां, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू।

सेंसेक्स 1155 अंक से ज्यादा उछलकर 76683 के पार चला गया। वहीं निफ्टी भी 317 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 23940 के स्तर को पार कर गया। वहीं भारत फ्रांस के बीच स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत और फ्रांस के रिश्ते अब एक नए मुकाम पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच नाइस शहर में एक बेहद अहम मुलाकात हुई है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। वहीं सोमवती अमावस्या पर देश भर के घाटों पर उमड़ी भीड़। जी हां, आज धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी एक बहुत बड़ा दिन है। पवित्र अधिक मास के दौरान आज देश भर में सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। सुबह से ही हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं और दान पुण्य भी हो रहा है। इसी के साथ भारत में क्रूड ऑयल की गिरावट से राहत की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4% से ज्यादा गिरकर $83 प्रति बैरल पर आ गई हैं। हालांकि आज देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रिटेल दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। आज की सबसे बड़ी वैश्विक खबर वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया से है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही महीनों पुरानी जंग आखिरकार खत्म गई है। दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश अपनी सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकने पर सहमत हो गए हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की तैयारी। जी हां, अमेरिका ईरान शांति समझौते का सबसे बड़ा असर दुनिया की इकोनॉमी पर दिखने लगा है। इस डील के तहत तेल सप्लाई के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दिया जाएगा। वहीं फ्रांस में आज से शुरू हुआ 52nd G7 समिट। जी हां, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का महामंच यानी कि 52nd G7 समिट आज से फ्रांस में शुरू हो गया है। इस बार के समिट का मुख्य फोकस वेस्ट एशिया में शांति बहाल करने और दुनिया भर में सप्लाई चेन को मजबूत करने पर है। वहीं जापान और ब्रिटेन के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा एग्रीमेंट। जापान और प्रधानमंत्री साने तकाइची और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टॉमर के बीच लंदन में एक बेहद अहम बैठक हुई है। दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा और नई टेक्नोलॉजी को लेकर हाथ मिलाया है। वहीं नेपाल में नए प्रधानमंत्री का बोल्ड एक्शन विरोध शुरू। जी हां, नेपाल के नए रैपर से प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह ने अपनी कुर्सी संभालते ही एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने काठमांडू और आसपास के इलाके में अवैध बस्तियों और कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। वहीं ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त तेजी, निकेई ने बनाया रिकॉर्ड। जी हां, अमेरिका ईरान डील का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर दिख रहा है। आज सुबह जापान का शेयर बाजार निकेई 5% से ज्यादा का रिकॉर्ड उछाल के साथ 69,500 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। जी हां, इसी के साथ ही अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भी भारी बढ़त देखी जा रही है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले विमेंस T20 वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। जिया, क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए एक बेहद शानदार खबर है। विमेन T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में भारतीय महिला टीम ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को धूल चटा दी है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026, जापान ने नीदरलैंड्स को 2-2 की बराबरी पर रोका। अमेरिका के डला स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद रोमांचक ग्रुप मैच में जापान ने बड़ा उलटफेर करते हुए मजबूत नीदरलैंड्स की टीम को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से रौंदा। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले में 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने अपनी क्लास दिखाते हुए कुराकाओ को 7-1 के भारी अंतर से हरा दिया।
वही आखिरी वर्ल्ड कप धीरज अबामुद्वर ने जीते 2 गोल्ड मेडल्स। जी हाँ, तीरंदाजी के मैदान में भारत का झंडा बुलंद हुआ। अंताल्या में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए मेंस इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम इवेंट को साउथ कोरिया के दिग्गज खिलाड़ियों को

0: हरा कर 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। ऐसे के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a
2: statement. Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: Tune Om's Org Assisted Living ke baare mein suna hai? Gurugram mein hai. Professional senior living, 24/7 nursing aur doctors ke strong tie-ups ke saath. Fortis, Medanta, CK Birla, Artemis, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: Seriously? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
5: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है इसे हम बिन कॉइन कहते हैं अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें
5: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज लहंगा सलवार कमीज पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस इतना ही नहीं ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स प्रीपेड चार्ज कार्ड्स फैंसी ज्वेलरी बैंगल्स गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलन गैबा ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices.

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी 101.1 FM ते जीआर 6 संदेश शौलक दे नाल सी बन चुके हो। ते सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला हो चुक्या है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो दसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते dasvani@dasvani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जेड़ा तुहानू चंगा लगता है तुसी ओह अपना सकते हो, पर साडे नाल देखो गल्लां बातां जरूर करनियां ने। फटाफट दे नाल तुसी अपना फोन चुको ते साडे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां तुहाडे नाल जुड़ी ही रहना, गल्लां बातां इसे तरीके दे नाल असी करदे ही रहना। बस तुसी जुड़ना बिलकुल भी ना भुलो, तुसी जुड़ो फोन चुको ते मैं हुणे वापस आउंदी हां। उन्हां समय इन्हां सोहणे सोहणे गीतां नूं तुसी इंजॉय करो।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM ते जी आर 6 संदेश अलग दिन आल तुसी बड़े हुए। देखो मूवीज दी हमेशा गल करदे हुंदे आ क्योंकि मैं चाहनी हुंनी आ कि थोड़ा जिहड़ा हर टाइम हैगा ना, बेशक वह वीकेंड होवे ते बेशक वह वीकडेज होण, जदों भी तुसीं थोड़ा मूड ऑफ होवे, कुछ स्पैशल करना होवे, तां कुछ देखण लई कंटेंट लभ रहे होवे, तां मैं तुहाडी हैल्प करां, तां अज मैं उही काम करूंगी। देखो जेकर तुहानू वी शार्क वर्गियां सस्पेंस थ्रिलर पसंद आउंदियां हैगियां ने ना, तां अज मैं तुहाडे लई लैके आई हां अजिहा ही शार्क मूवीज दी लिस्ट, जिन्हां तुसी घरे बैठे हो ओटीटी ते देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हैं उन्हां नूं, ते जिस विच सस्पेंस थ्रिलर दे नाल नाल मिस्ट्री भी बहुत वधिया है की है। सच्चियां घटनावां ते आधारित भी हैगियां ने, कुछ कु सारियां ने कुछ कु, ते दसां तुहानूं इन्हां बारे दसदी आं, पर पहला सुनो एक गीत।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ਵਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਸ਼ਕੀ।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik.

0: Love these song in cinemas this Eid ul Adha May 27th.
1: Koi acha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
2: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. Commercial matter ho jaise lease ka mamla, business ho ya phir gharon ki buying selling ka mamla aur divorce jaise family matters bhi, wo sab mein madad kar sakti hain. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
1: अरे वाह, इनका पता बताना.
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं।

0: साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान।

Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: दीवाना

0: बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: गो फॉर द बेस्ट वीरे अतुल भारद्वाज जी नो अजी कॉन्टैक्ट करो ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नो हैंडल करन जी वो एक्सपर्ट हन क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ एंड द बेस्ट पॉइंट They understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Queima suco, suco!
1: Ai, ai, ai, karu main kya suku suku.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो

और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े। वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोतों, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

नमस्कार ब्रिस्बेन, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आप सभी की दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन। आज है ट्यूसडे और उम्मीद है मंडे का हैंगओवर अब तक खत्म हो चुका होगा। जी हाँ, जो लोग ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, जो टैक्सी ट्रक या फिर उबर चला रहे हैं और जो घर में चाय बना रहे हैं, सबका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ अपने इस प्रोग्राम यानी कि चांदनी के सफर में बहुत बेहतरीन चीजें। जी हाँ, यहाँ पर होंगे ब्रिस्बेन की फ्रेश अपडेट्स, वेदर, ट्रैफिक की बातें और फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जबरदस्त म्यूजिक। आप सभी बस बने रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कुछ अपडेट्स जानते हैं ब्रिस्बेन की। दोस्तों, ब्रिस्बेन और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में इस वीक क्लाउड कवर और हल्की बारिश के चांसेस बने हुए हैं। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के मुताबिक आज टेम्परेचर लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, इसीलिए घर से निकलते वक्त अम्ब्रेला साथ रखना ना भूलें। तो आइए इसी के साथ मैं नहीं भूलूंगी ये गीत सुनाने के लिए आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

क्वींसलैंड में ई बाइक और ई स्कूटर रेगुलेशंस को लेकर काफी डिस्कशन चल रही है। रोड सेफ्टी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लेकर नए प्रपोजल्स पर डिबेट भी जारी है। वहीं पर दोस्तों, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल का एनुअल बजट भी चर्चा में है और रेट्स में पॉसिबल चांसेस को लेकर लोगों की नजर बनी हुई है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, इसी गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कल क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आज आप क्या करते हैं। जी हाँ, और आज किसी एक काम को जरूर कंप्लीट करिए जो आप काफी दिनों से पोस्टपोन कर रहे थे। अब याद कीजिए कौन सा ऐसा काम है जो आप पोस्टपोन कर रहे थे। फिलहाल मैं पोस्टपोन नहीं करूँगी, इस गीत को सुनाना, सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 1 बिलियन से ज्यादा कॉफी कप्स यूज होते हैं और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, इंसान दिन भर में एवरेज 20,000 से ज्यादा डिसीजन लेता है। जी हाँ, इसीलिए अगर सुबह ही थक जाते हो तो टेंशन मत लो, आपका ब्रेन जो है ना ओवर टाइम काम कर रहा होता है, इसीलिए कभी भी कुछ भी सोचना हो या डिसीजन लेना हो तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक डिसीजन लेती हूँ आपको प्यारा सा गीत सुनाने का। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं, ज्यादातर लोग सक्सेस इसलिए मिस कर देते हैं या फिर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं करते दोस्तों, वो अवेलेबल रिसोर्सेज से शुरुआत कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स है ना, तो उन्हीं 10 मिनट से अपना गोल स्टार्ट कीजिए और फिर देखना सक्सेस हमारे हाथों में जरूर आएगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आइए वेदर अपडेट जानते हैं। ब्रिस्बेन और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में आज क्लाउड कवर और स्कैटर्ड शावर्स के चांसेस हैं और रोड कुछ जगह स्लिपरी हो सकती है, इसीलिए ड्राइव जो है वो सेफली और स्पीड लिमिट्स फॉलो करिए। ट्रक ड्राइवर्स और अर्ली कॉम्यूटर्स को रेडियो ब्रिस्बेन की तरफ से सेफ जर्नी की शुभकामनाएं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ आज का ये मॉर्निंग शो का जो वक्त है वो खत्म होता है। मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए, जिंदगी चाय की तरह है, उसका स्वाद तभी आता है जब उसे आराम से एंजॉय किया जाए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। हैव अ फैंटास्टिक ट्यूसडे ब्रिस्बेन, टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फिलीपींस के मिंडानाओ में 6.3 तीव्रता का भूकंप, जमीन से 117 किलोमीटर नीचे था केंद्र। फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने बताया कि फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप जमीन से 117 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि इस भूकंप से किसी के भी हताहत या नुकसान होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन। पीएम स्टार्मर का बड़ा ऐलान। बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की कि देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। इसके साथ ही गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग सेवाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। पीएम स्टार्मर ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नामों का खुलकर उल्लेख नहीं किया है जिन पर ये बैन लगेगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये नियम अगले साल की शुरुआत में लागू हो जाएगा। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश, 2 पायलटों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक बड़ा सैन्य हादसा हुआ, जहां पाकिस्तानी वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान नियमित उड़ान के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान सवार 2 पायलटों की मौत की खबर सामने आई है। ये हादसा खैबर पख्तूनवा प्रांत के मरदान जिले में कटलंग रोड के पास जाबर नहर इलाके में हुआ। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। अब टिकाऊ और अंतिम समझौते की उम्मीद, अमेरिका ईरान की पीस डील पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हो चुकी है और इस पर स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने के आसार हैं। इसका दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघर्ष खत्म करने के लिए बनी इस सहमति का वो स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी भरे एक ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। धमकी भरे इस ईमेल के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि गहन जांच के बाद इस धमकी को केवल एक अपवाह घोषित किया गया। अब तक की प्रमुख खबरें, अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर और प्यार भरा नमस्कार सलाम सत श्री अकाल। अमिता गुड मॉर्निंग हमारी ओर से आप सभी को
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते एवरीवन। वाओ इट्स ट्यूसडे अगेन। टुडे इज द 16th ऑफ जून 2026।
1: यस एंड टुडे आज मौसम कहा गया है शावा और तू रहेगा 15 and 23। कल के लिए कुछ पार्टली कह रहे हैं कि कुछ बादल छाए रहेंगे 15 and 23 रहेगा। दोस्तों थर्सडे को भी वही हाल है लेकिन टेम्परेचर 13 and 23 रहेगा नो रेन कहा गया है। फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी 14 and 21 नो रेन। सैटरडे को पॉसिबल शावर्स 15 and 25 और संडे को शावर और टू 16 and 23 रहेगा और मंडे को शावर और टू 16 and 23। लो टेम्परेचर इज नॉट गेटिंग वेरी लो हैव यू नोटिस दिस दे प्रेडिक्टेड
2: एक्सक्यूज मी
1: यू नो या
2: इट्स नॉट सो बैड समहाउ
1: या इट विल बी हायर टेम्परेचर्स या। चलिए देखते हैं और रास्ते पर क्या हो रहा है। दोस्तों रेडियो मिजबानी आप सुन रहे हैं नंबर है 04-3003-1701 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सदर्न क्रॉसवे ब्रिस्बेन एयरपोर्ट हैदराबाद यहां पर जो है साउथ बाउंड एयर क्लियर हो गया है दोस्तों और एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो आगे बढ़ते हैं एज फार एज वी कैन सी। और चलो फिजी न्यूज में कहा गया है कि फिजी में भारी बारिश हो रही है फ्लडिंग और तेज गति से हवा भी बह रही है और आज देश भर की सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अथॉरिटीज ने लोगों को कहा है कि अननेसेसरी जो ट्रेवल आप कर रहे हैं इससे बच के रहे आप बच और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की को कह रहे हैं ठीक है। और गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम सीवियर वेदर की वजह से फिजी गवर्नमेंट ने कई सिविल सर्वेंट के लिए वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट एक्टिवेट किया है जबकि एसेंशियल सर्विसेज नॉर्मल वो सब चलती रहेगी दोस्तों। और जो बेंगा में बोट ट्रेजेडी हुआ है जो बोट कैप्साइज्ड हुआ है दोस्तों इसमें सिक्स पैसेंजर जो कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस एक्सीडेंट में पहले ही कई जाने जा चुकी है। अच्छा एक्सक्यूज मी पुलिस कांस्टेबल पेनियासी रदागी का जो डेथ हुआ है दोस्तों इसके इन्वेस्टिगेशन का फाइल और एविडेंस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन को रिव्यू के लिए भेज दिया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूशन। यू नो माय फादर वाज आल्सो अ प्रोसिक्यूटर
2: इज इट
1: ओह या
2: ओके आई न्यू ही वाज अ पुलिसमैन
1: या ही इज आल्सो अ पुलिस क्राउन प्रोसिक्यूटर। फिजी स्कूल कॉर्पोरेशन ने 2026 शुगर क्रशिंग जो सीजन की शुरुआत को डिले कर दिया है प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द वेदर जिससे शुगर इंडस्ट्री और फार्मर्स पर असर पड़ सकता है। अच्छा US
2: you on air you know
1: am I becoming like Trump
2: oh my god
1: oh man my favorite comedian US Iran ka agreement ke khabron ke baad log fuel prices kam hone ki ummeed kar rahe hain lekin FCCC ne kaha hai ki abhi तुरंत फ्यूल और एलपीजी प्राइसेस में कमी की उम्मीद ना रखें, ठीक है। फिजी ने यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट का स्वागत किया है और उम्मीद जताए है कि किसी भी ग्लोबल ऑयल मार्केट और फ्यूल कॉस्ट पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों और चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं और एक गीत सुनते हैं पहले।
2: ओके
1: ओके
2: या
1: ऑलराइट आई एम गोना स्टार्ट विद दिस गीत एंड वी टेक इट फ्रॉम देयर। ओके इट्स बेटर गो फ्रॉम द स्टार्ट राइट हियर वी गो
2: दैट्स द सेम सॉन्ग आई वाज गोना स्टार्ट विद
3: दिल में मेरे
1: आज क्या है कुछ नहीं मालूम.
2: तू बोल.

0: लगा
1: लगा
0: कैसा लगा गाना दोस्तों? बहुत प्यारा सा गीत था.
1: लॉन्ग सिंस वी प्लेड आवर एडवर्ट मैन. लगा
0: I know. What happened to that? I have to look for it. Oh, yeah, that's right. I was soch raha tha ki kahan suna maine. Hamara wo ad hai.
1: Advert, huh?
0: What happened to it?
1: I don't know.
0: I have to look for it. Wow.
1: You know, that was my favorite advert.
0: I know. How could that be missing? I'll have to have a look at it. Oh, I hope I haven't erased it or anything like that. Anyway, dosto. उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों. ठंड है थोड़ा, उतना भी नहीं है, ठीक है. और मुझे लग रहा है यहाँ पर गर्मी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ गर्मी काफी रहेगी. आई मीन यू एक्सपीरियंस्ड इट व्हाइल यू वर देयर. काफी गर्म रहा और यहाँ पर आई थिंक देयर वाज वन वीक ऑफ कोल्ड. यू वर हियर एट दैट टाइम. देयर वाज वन वीक आई थिंक इट वाज कोल्ड एंड ओ नो यू वर नॉट हियर. फिर उसके बाद में ठीक हो गया था. फिर अभी तो ठीक है दोस्तों. तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए. नंबर है 04300031701. अगर आप भी कुछ सुनना चाहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं.
1: एंड डोंट टेल अस.
0: डोंट टेल अस व्हाट?
1: बिकॉज वी वोंट प्ले इट.
0: नो, वी'ल प्ले इट. वी'ल प्ले इट.
1: Why are you making promises you can't keep?
0: I always play it when somebody asks for a song. Okay. Chalo aage. Okay.

0: ओके दोस्तों, चलिए बड़ा फैसिनेटिंग गाना आपको सुनने को मिल रहा है सब। और ऐसे में एक गाना मैं और सुनना चाहता हूँ, पुराना गीत है, ठीक है? आज क्यों ऐसे हुआ कि पुराने गीत?
1: आई डोंट नो, इट्स जस्ट मेबी आई थिंक इट्स द वेदर।
0: कुड बी
1: आई थिंक इट्स द वेदर।
0: ओके, और ये जो गाना है आशा भोसले और आर डी बर्मन, ये दोनों ने मिलकर गाया है। आर डी बर्मन ने भी गाया है इस गाना को, मुझे जहां तक मैं जानता हूँ। तो चलो सुनते हैं इस गीत को।

0: अच्छा वो वाला टाइम आ गया है जब हम आपको विश करेंगे आपका हैप्पी बर्थडे।
1: ओहो
0: और क्या, किसी तरह का एनिवर्सरी हो। और लेकिन बर्थडे बहुत इम्पोर्टेंट है, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आप एक साल और वाइजा हो गए हैं।
1: दैट्स सो ट्रू। या
0: तो एंजॉय योर डे।
1: येप, हैव अ ब्यूटिफुल डे एंड हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर मॉर्निंग टीम एंड एक्चुअली द होल ऑफ प्रिज़वानी।
0: Yes.
1: Wish you a beautiful day, whether you're celebrating your birthday or an anniversary.
0: And I. और अगर आज आपको कोई डिनर ले जाने वाला नहीं है, तो हमें आप कॉल करें, हम दोनों आएंगे आपके साथ, डिनर करेंगे।
1: Oh, what a brilliant idea!
0: चलेंगे टीका, क्या बोलते हैं उसको?
1: टीका बाइट्स. Why not?
0: चलेंगे हम.
1: Yeah, that's a.
0: एक बार चले जाएंगे आप तो फिर आपका आदत पड़ जाएगा, बार बार जाना चाहेंगे, फिर आप हमको ब्लेम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप खुद ही जाओ कहीं पर भाई, हम लेकर जाएंगे तो फिर
1: yeah, that's true.
0: है कि नहीं?
1: Okay, here's a song for you.

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे बहुत बहुत लोग आ गए, थैंक यू सो मच। नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इवन दो हमारा ऐप नहीं चल रहा है अभी, लेकिन इस पर काम हम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। समय लगता है। चलो अगला जो गीत है आप सोचिए कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा कॉम्पिटिशन है ये, कभी मैं सोचता अभी आप सुनो, मेरे बताइए कौन सा गीत होगा। जब मैंने तुम्हारी खूबसूरत आंखें देखी, मेरा दिल प्यार के नशे में खो गया। अच्छा गिव मोर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। द सॉन्ग इज अबाउट अ मैन हु फॉल्स डीपली इन लव आफ्टर सीइंग अ ब्यूटीफुल वुमन, राइट। ऑब्वियसली हे आईज आर डिस्क्राइब्ड एज, ओ आई वोंट से दैट वर्ड बिकॉज दैट विल गिव इट अवे, रोज लाइक ड्रीमी रोमांटिक, राइट, नॉट लिटरली पिंक। द लिरिक्स एक्सप्रेस, वेट करो, द लिरिक्स एक्सप्रेस हाउ लव हैज कंप्लीटली टेकन ओवर हिज हार्ट, यू नो, पागल है, पगला गया।

0: संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। क्या बात है, कातिल क्या वर्ड इन्होंने यूज किया है, क्या अच्छी तरह से इन्होंने मीनिंग दिया है इसमें कि पुआ गाय वो जस्ट कॉम्प्लीटली सरेंडर टेकन होगा। खैर देखो, प्यार में शायद ऐसे होता होगा। और वो गाना मुझे याद आ गया,
1: प्यार में कभी कभी ऐसा। Why are we thinking of the same song?
0: We are in sync today. I don't know.
1: That's crazy.
0: Song. It's a good thing. Good song.
1: Okay.
0: प्यार में कभी कभी।
1: I think that's from दूसरा आदमी, right?
0: ऐसे कुछ है। बजा दो प्लीज। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे और फिर 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम रहेगा और 3 बजे से निबिया के साथ, ठीक है। और आज मालूम नहीं अंबिका भाई आएंगे कि नहीं, लेकिन चलो शायद आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। ओके, यू फाउंड इट?
1: या
0: ओके, तो इस अगला जो गीत है सुनते हैं दोस्तों, और अगर आपका भी कोई चॉइस हो तो लेट मी नो, लेट अस नो।

0: जी हाँ दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं, दिल का अपना और दिमाग है। मेरे ख्याल से कोई ऐसे काम कर बैठता है जो कभी कभी आप उसको काबू में नहीं ला पाते हैं। ऐसे होता है।
1: That's a thing, eh? You got no control whatsoever, isn't it?
0: और देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं, उसकी जिंदगी में खुशियां की कभी कमी नहीं होती। ठीक है, तो कभी कोई का काल, कभी कुछ कुछ हो रहा है, कोई के कुछ अच्छा चल रहा है, तो दोस्तों उसी खुशी को आप भी बांटो, है कि नहीं?
1: यप।
0: या तो चले कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और क्या, और यू कैन अप्लाई समथिंग आप?
1: या आई वांट टू।
0: ओके, this is is one of my favorite songs, one of, okay, there are many favorite songs.

0: और थैंक यू थैंक यू। कहते हैं ना, अच्छे लोग और अच्छे विचार जिंदगी के सबसे बड़े खजाने होते हैं दोस्तों। इसीलिए देखो हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपका कोई मैसेज हो कुछ हो, देखिए दोस्तों जो हमारे बताता चलूं, अगर आप बर्थडे विश करना चाहते हैं अपना रिकॉर्डिंग करके या जो कुछ भी हो, हम यहाँ पे उसके लिए चार्ज नहीं करते।
1: बर्थडे विश टू,
0: यस, वी डोंट चार्ज, ओके, वी लेट यू डू इट, स्पेशली हमारे बच्चे, बच्चे जो
1: इफ दे कम, हाउ नाइस दैट वुड बी,
0: या उनके लिए भी। और आप तो जानते हैं, अगर शोक सूचना है, ये जो है, ये सब हम ब्रिजवानी का सर्विस है दोस्तों, वी डोंट चार्ज फॉर दैट, ओके। तो डोंट, कभी भी कुछ हो या बर्थडे विश या कुछ हो, प्लीज, वी आर ऑल फैमिली, ठीक है, वी वांट टू ऑल सेलिब्रेट टुगेदर। दुनिया बहुत छोटी है दोस्तों, ओके, yeah, what did they say?
1: That is
0: but
1: so
0: a blink of an eye,
1: yep,
0: yes,
1: life is too short,
0: too short, और फिर कहा गया दोस्तों कि अपने सपनों को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें देखकर वो टूट ना जाए, बल्कि और ज्यादा चमकने लगे, ठीक है। हर दिन एक नया मौका है, इसलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते हुए, ठीक है। लाइफ को बहुत ज्यादा पर्सनल मत बनाओ, बहुत ज्यादा, because hey,
1: don't take it too seriously,
0: okay,
1: that's what
0: life
1: you're trying to say,
0: a,
1: right,
0: yeah, yeah, that's what I'm trying to say, don't take it too seriously, some people are so serious, na muskaan hai chehra mein na kuch, aap dekhenge isse lag raha hai ki aag nikal raha hai, aisa mat raho, haste raho, gaate raho, you know, you don't know kahan par kaun gali mein,
1: zindagi hasne ke liye
0: aur hasane ke liye,
1: no, that's so true, yes.
0: ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो गाना है आशा भोसले और दिलराज कौर और आर डी बर्मन।

0: और जब मौसम मस्ताना है दोस्तों, क्यों मस्ताना है? जी हाँ, देखिए शांति बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो है। जब मन शांति होता है तो दुनिया भी सुंदर लगती है, यू नो दैट।
1: That is so true.
0: Yeah, तो अंदर आप ढूंढो शांति।
1: Yeah, you gotta look within, नहीं?
0: Yeah, अपने आप को पहचानो, कहते हैं। कैसे पहचानूं भाई? खैर चलो दोस्तों, उम्मीद है आज के जो गीत आपको पसंद आ रहे हैं, आज कुछ ऐसा
1: I don't know.
0: ऐसा हमने कुछ it wasn't planned, was it?
1: No.
0: Yeah. I think your songs went.
1: My songs went somewhere else.
0: Yeah, you know, I think people are enjoying it. Thank you. और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और आप इसमें पार्ट भी ले रहे हैं, थैंक यू सो मच। जी हाँ, नंबर है 04300031701। अगर ओवरसीज से कॉल कर रहे हैं आप तो +61 और
1: 43003-1701
0: जी। सो +61 43003-1701
1: हाँ
0: राइट, एंड वी आंसर द कॉल।
1: यप,
0: आई वांट टू ब्रिंग यू ऑन एयर, कम ऑन प्लीज।

जी ओके, चलिए दोस्तों, एक गीत है जो मुझे याद आया और आशा भोसले और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है, शायद आर डी बर्मन के संगीत है। आज आर डी बर्मन के संगीत पर सब कुछ हो रहा है। आपके कमरे में कोई रहता है, ठीक है।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003. क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
4: Okay. Well, we're back after that break. It's 8:27.
5: Yes.
4: And I want to play a song, okay?
5: Okay.
4: Another R.D. Burman song, if you don't mind. Okay. Hello.

0: कैसा लगा गाना? बहुत प्यारा गाना था दोस्तों, और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चले, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हो,
1: कॉल कीजिए।
0: जी हाँ, नंबर है
1: 0430031701
0: या +61 4300031701
1: I'm playing the next song.
0: Okay, go for it.

ओके, और इसी गीत के साथ साथ दोस्तों, कितना बज गया? कोई 12 मिनट रह गया है इस कार्यक्रम में, तो चले अगला जो गीत है दोस्तों, शायद एक गाना फिल्म धर्मा का होगा, धर्म और आशा भोसले हैं और महेंद्र कपूर या रफ़ी साहब, चलो सुनते हैं कौन कौन है इसमें। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा दोस्तों ये गीत।

0: मैं गुनाहगार हूँ जो सजा चाहे दे दो मुझे। अरे भैया ये मिस्टेक मत करना।
1: ओके
0: ओके
1: आई विल प्ले दिस नेक्स्ट सॉन्ग।
0: माय गॉड ऑलराइट
1: एंड यू कैन डू द लास्ट। इसी के साथ हम
0: नो नो दैट विल बी द लास्ट वन। यू ओनली गॉट 5-6 मिनट्स।
1: द सॉन्ग इज ओनली 5 मिनट्स।
0: वेल ओके सो हम अब यहां से निकलेंगे दोस्तों और
1: okay.
0: और याद रहे सताक्षी के साथ हो जाएंगे आप इस कार्यक्रम के बाद में। भूलना मत 11 बजे से आप पंजाबी प्रोग्राम सुनेंगे संदेश के साथ और फिर 3 बजे से निविया के साथ।
1: टुडे इज ट्यूसडे।
0: अभी का भाई वोंट बी कमिंग बिकॉज़ ही हैड अ सर्जरी सो ही इज स्टिल रिकूपिंग।
1: ओह ही इज नॉट।
0: या सो ही जस्ट टोल्ड मी सो
1: या
0: स्पीडी रिकवरी
1: विशेस। यस स्पीडी रिकवरी। कीप वार्म।
0: यस He's lucky.
1: Gutna is cold.
0: He's lucky. He's got a nurse in the house, eh?
1: But Gutna is cold, so he.
0: I've been saying something. Did you hear what I said?
1: I did. He's so blessed.
0: So blessed to have a nurse in the house to nurse him.
1: Bobby will take good care of him.
0: Yeah. So not everybody's that lucky to have a nurse in the house. क्या क्या मुख से निकल जाता है दोस्तों हमारे क्या बताऊँ मैं लगाम. oh no, no! She knows me very well. She'll be laughing. I think she'll be laughing. Well, I'll hear from her.
1: okay.
0: All righty. Well, okay. Well, we have to go now.
1: We will be making our move soon. So have a beautiful, blessed day.
0: कल सुबह आएंगे हम?
1: Yes. Oh, tomorrow's Wednesday already.
0: अगर सब कुछ ठीक ठाक
1: Half week down.
0: Yeah.
1: Half to go.
0: Yes.
1: So.
0: Okay.
1: We'll say namaste. Namaste. We'll say goodbye. Take care. Have an absolutely beautiful, beautiful day.

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से लेकर आई है सताक्षी आपके लिए सुबह की ताजगी, उगते सूरज के साथ ताजगी भरा ये सफर, जी हाँ, जिसे आप कहते हैं इट हैपेंस, आपका अपना मॉर्निंग शो, जहाँ पर हम और आप ढेर सारी बातें करते हैं सिर्फ आपके बारे में, आपकी जिंदगी, आपके जज्बातों, आपके इमोशंस, आपके करियर के बारे में। आज भी ऐसी ही ढेरों बातें लेकर, प्यार के ढेरों एहसास लेकर मैं सताक्षी हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे इस सुबह की ऐसी मॉर्निंग की ताजगी की, जिसे हम दिन भर बरकरार रखें तो हम अपनी जिंदगी में इस ताजगी को भर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको परेशान करती रही हैं या जिनके बारे में आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी बातें आज यहाँ पर होंगी। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिए पूरे दो घंटे रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। और सताक्षी एक बार फिर से आपको कहती है गुड मॉर्निंग।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सुबह का चंचल और खूबसूरत सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। एंड आई होप कि मेरे साथ साथ आपकी मॉर्निंग भी हसीन और खूबसूरत हो रही है। इस मॉर्निंग की ये खूबसूरती यूं ही आगे बनी रहेगी, आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और सुबह जो है वो गीतों के साथ, स्पेशली मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ और भी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए अपनी सुबह को और भी खूबसूरत बनाते हैं और फिलहाल एंजॉय करते हैं इस अगले ट्रैक को। इसके साथ हम सफर में भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और सफर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ढेर सारी बातें और भी होंगी। वैसे अभी कुछ खास लोगों को विश भी तो करना बाकी है, करेंगे ना इस अगले गीत के बाद। KPLS News रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

भाई चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं उनको विश करने का, जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है। और सबसे पहले बात रोज की तरह उनकी, जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई विश कि आपकी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो, आपका हर दिन जन्मदिन जैसा हो और जिंदगी की सारी ऊंचाइयां, सारी सीढ़ियां जो आपको उन ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, उन्हें आप चढ़ते जाएं, आप खुद में सुधार करें, खुद को एक बेहतर इंसान हर रोज बनाएं। जिनकी आज है शादी की सालगिरह यानी वेडिंग एनिवर्सरी, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी की राहों में यूं ही आगे बढ़ते रहिए और फिर देखिएगा जिंदगी आपके कदम चूमेगी। और ये जो जिंदगी का सफर है ये तो आपके लिए और भी खास और स्पेशल है, क्योंकि कोई एक ऐसा है जो आपके इस सफर में आपका हम सफर है, है ना। तो एक दूसरे का हाथ थामे बढ़ते रहिए आगे। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल खास है, जिनको आज के दिन से उम्मीदें हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि भाई हर गम के बाद एक खुशी आती है और जिंदगी में बैलेंस बनता जरूर है, तो आपकी जिंदगी में भी ढेरों खुशियां आएंगी और आपकी ख्वाहिश जो है वो जरूर मुकम्मल होगी। मिलती हूँ आपसे इस अगले ट्रैक के बाद ढेर सारी बातों के साथ इसी शो में इट हैपेंस में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इंजॉय करते हैं वो गाना जो मैंने खास तौर से डेडिकेट किया है आप सबको। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी 107.01 FM।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक, इट हैपेंस। सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रेसवाणी 1701 एम पर। आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त सताक्षी आपके लिए प्रेजेंट कर रही है। वैसे ऐसा कहते हैं कि आप तस्वीरों में यूं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उन तस्वीरों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं जो किसी ऐसे ने खींची हो जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह ये है कि आप उनकी नजरों से कुछ डिफरेंट लगते हैं, कुछ अलग ही लगते हैं, और इस वजह से उन तस्वीरों में भी आप थोड़े अलग नजर आते हैं। तो हाँ, जो लोग आपको, आप चाहे जैसे भी हैं, अपनी नजरों में खूबसूरत बना देते हैं ना, वो लोग भी खास हैं और उनकी खींची गई यादें यानी आपकी तस्वीरें भी बहुत खास है। आइए ऐसे लोगों के नाम जो हमें कैसे भी देखना पसंद करते हैं उन्हें डेडिकेट करते हैं, उनके नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर।

ना लाइफ में हमें बहुत अच्छी सीख देने के लिए आते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो सीख जब हमें मिलती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। कई बार मैंने देखा है ऐसे लोग जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते ना, वही हमें छोड़ देते हैं, वही हमसे दूर चले जाते हैं। ये जब आपके साथ होता है तो आपको डेफिनेटली बुरा लगता है, लेकिन फिर आपको समझ में आता है लाइफ टाइम के लिए एक लेसन कि यार आप कई बार फील कर रहे हैं बहुत पहले से कि आप एक रिश्ते में अकेले एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अकेले उस रिश्ते पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ना तो वो एफर्ट्स डाल रहा है और ना ही उतनी मेहनत कर रहा है उस रिश्ते पे। आप एक तरफा सिर्फ उस रिश्ते को निभा रहे हैं, उस प्यार को निभा रहे हैं, या फिर उस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं। और एक टाइम आता है जब आपको आपके एफर्ट्स के बदले में मिल जाता है अकेलापन। डेफिनेटली ये वक्त बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। आपको समझ नहीं आता कि आपने इतना कुछ किया फिर भी ऐसा क्यों हुआ। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको लेसन समझ आता है कि भाई साहब इतना एफर्ट किसी भी रिश्ते में नहीं डालना है जहाँ पर आप अकेले ही उस रिश्ते में मेहनत करते रहें, है ना। तो बस याद रखिए कि उतना ही दीजिए सामने वाले को जितना उससे डाइजेस्ट हो जाए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी। यू ही एंजॉय करते रहिए मॉर्निंग वाली वाइब्स और मॉर्निंग वाले थॉट्स के साथ कुछ मॉर्निंग वाले गाने भी।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का. अच्छा, वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. इट हैपन, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ. और जो लोग अभी नहीं उठे हैं, प्लीज उठ जाइए भाई. कोई आपके गुड मॉर्निंग का वेट कर रहा है, कोई इस बात का वेट कर रहा है कि कब आप उसे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या फिर उससे पूछेंगे कि दिन में आज उसकी क्या प्लानिंग्स हैं. जी हाँ, बहुत लोगों की गुड मॉर्निंग जो है वो आप पर डिपेंड है. आप उन्हें कितना स्मूथली फील कराते हैं कि आज का दिन खूबसूरत होने वाला है, इस बात पर डिपेंड है. तो भाई उठ जाइए और जरा एक मैसेज उनको भी कर दीजिए जो बेचैन है इस इंतजार में, बार बार फोन का स्क्रीन चेक कर रहे हैं कि कब आपका मैसेज ब्लिंक करेगा उस पर. तो बताइए उन्हें कि उनका दिन शुरू हो चुका है आपके साथ. और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM.

0: वेलकम बैक इस एक और मॉर्निंग ट्रैक के, इस बार आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों, हाथ पकड़ना आसान है लेकिन साथ निभाना बहुत मुश्किल। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपका हाथ थामते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, साथ निभाने का एहसास दिलाते हैं, और फिर जब आपकी जिंदगी का बुरा वक्त आता है तो आपका साथ छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका हाथ थामने के बाद ताउम्र वो साथ न छोड़ने की ठान लेते हैं। आपकी जिंदगी का कितना भी बुरा टाइम हो, चाहे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर भी वो हमेशा आपका हाथ थामे आपके साथ खड़े रहते हैं। और यही तो फैक्ट है कि इंसान को प्यार उससे नहीं होता जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि प्यार उससे होता है, रिश्ता उसके साथ निपटता है, दोस्ती उसके साथ बढ़ती है जो आंसुओं में भी साथ न छोड़े। और ऐसे ही लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं, आपके दोस्त, आपका हमसफर, आपका पार्टनर, आपके रिश्तेदार, उन सब के नाम है ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, आपका ब्रेकफास्ट वाला शो।
1: जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, मुझे बात ये सबने समझाई थी, एक चक्कर है प्यार, उसमें घूमना नहीं, समंदर सा होगा डूबना नहीं, जरा बच के रहना, संभल के चलना, हो जाएगा बेहाल तो फिर ना कहना। और कहते कहते, सुनते सुनते, टकरा जो गया उस पार मैं, डर जा बेटा लग गई तेरी, फट गया साला तू प्यार में।